मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 एफएम।

ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ।

अपनी सुख सुनिया लिखी दे जनाब भेजी छोड़े मास्टर मोस्टर होने तरह 0793984939339 साढ़े प्यारे भाई जनाब चेयरमैन मोहम्मद महमूद खान साहब प्रोग्राम में शामिल है इन्होंने तलक गगनाड़ा कोटली आजाद कश्मीर लाल मकीम शफील हमेशा साढ़ा साथ देने जनाब तो आखने जी कि नाइस प्रोग्राम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहु थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब तो हूँ ये अगले माइए तो टप्पे चेयरमैन जी स्पैशली तुसा तो बाकी जितने भैन भ्रा सौजूद है उन्होंने सारे बिस्मिल्लाह जी चेयरमैन जी

असें गी फोन कीता सलाम साढ़े भाई प्यारे भाई चौधरी तारक महमूद दरिया जट्टा रईस आजम जनाब दरिया जट्टा चौधरी तारक महमूद साहब ते उन्होंने तरफ जनाब जट्टा पसंद कर सो ना दस इसने मतलब कोई नहीं।

Good.

Allah.

0: Puxa vida.
1: ऐसा खूबसूरत आपने शेर और कलाम पढ़ा है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो कुछ अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं समझता हूँ कि वो लगता है। आपका पहले तो मैं बहुत ही मशहूर हूँ कि आप इतनी बीमारी की हालत में भी फिर भी आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। आपकी बेटी शायदा पर मशहूर हूँ जिन से दीन आपका तलक है
0: ऐसे उस मुख्तसर
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: ये सब

0: Fazer dele.
1: Aí कश्मीर से।
0: अच्छा, माशाल्लाह।
1: कब्र है बहुत
0: cool.

0: 人，小学生，我记得就我不是安的，
1: 说了啦，
0: 就啊，他而这个
1: 对的，
0: 来个我是三车两个的家里，我带一个家庭，
1: 很那个。

0: हमारे गांव का।
1: अच्छा मशहूर
0: कुछ साल से वहां से चले गए।
1: अच्छा
0: वो छोटा है मर्दा
1: जी जी जी
0: वहां हो गए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ये कौन से सन की बात है 36
0: को 3-4 साल 5 साल पर बहुत पुरानी बात।
1: ठीक ठीक
0: तो वहाँ खानदान है सही उसी किताब चल बाग है जो वकील वगैरह भी हैं लेकिन तो हम तो
1: निजामुद्दीन
0: दे
1: माशाल्लाह
0: हाल में जो बहुत बड़ी।
1: अच्छा
0: ये वहाँ आबाद है ये वहाँ

0: के पास
1: अच्छा
0: अच्छा
1: जी
0: सख्ती है उसको पश्ते में अखुन कहते हैं
1: अखुन जी जी
0: तो उसकी हम पर अखुन जाग
1: जी जी बिल्कुल
0: तो पाकिस्तान शाह व्यक्ति
1: जी जी जी
0: लोगों ने
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ
0: उनके खिलाफ हूँ
1: अच्छा
0: हाँ इसके पीछे भी तीन किस्म के लोग जिनको मैं शाहबाड़ी कहता हूँ
1: जी जी
0: शाह शाह शाहबाड़ी में तुमको शाह कहता हूँ

0: अच्छा
1: तो करते हैं।
0: ठीक ठीक ठीक
1: बनास
0: अच्छा ये

0: dedi.
1: Muhammed Ahunzade.
0: Acha.
1: Müzik. O riski bağlı. Mümkün anlıyor Abdülhannan, Abdülrezzak or Abdüddeyyan.
0: Acha, acha, acha.
1: Abdüddeyyan.
0: Tek.
1: Balotu. Osman'ın bir ziyaret banayı onunla.
0: Acha.
1: Çünkü vahap. बलूचिस्तान
0: बलूचिस्तान में ठीक
1: बीच में आपको और भी बता दूँ सिक्की
0: जी
1: हमारे तो कसंचा
0: कसंचा ठीक
1: तो वो तो उनको
0: अच्छा
1: का नाम था अब्दुल हन्नान और हिंदुस्तान में गुजरात में जूनागढ़ वगैरह में बहुत तालीम दी उन्होंने बहुत शागिर थे तो फिर जब पाकिस्तान माना किसी बुजुर्ग ने फिर क्योंकि खुद भी
0: जी जी तो जो अच्छा
1: कहते हैं मैं खून देख रहा हूँ
0: अच्छा फिर जान हो रहा है
1: पाकिस्तान बना
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो वह कुछ में था
0: अच्छा वो तुंदली यादें होंगी ना अगर छह साल में छह उम्र थी आपकी
1: हाँ वो छह साल के साथ
0: जी जी जी
1: मैं 30 पैदाइश है ना
0: जी जी जी जी
1: तो पाकिस्तान जब मैं 6-7-8 साल को हुआ मेरा है
0: जी जी जी
1: तो मुझे
0: अच्छा
1: बाद में पता है जीआईजी ओ फिर को बन गया
0: अच्छा
1: क्योंकि
0: अच्छा अच्छा
1: पेशावर
0: अच्छा
1: उसके साथ गाड़ियों थी
0: ठीक
1: के लिए तो आजकल उसको कुछ और डाल तो देखा खड़ी पेशाब कर रहा था
0: अच्छा
1: क्या क्या बताए जी
0: जी जी जी
1: तो हाँ फिर पेशावर पहुंच गए
0: अच्छा
1: इस तरह साल का था तो
0: अच्छा अच्छा कितने साल उम्र थी 8 साल
1: 8 साल का था
0: अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बहुत थोड़ा
1: दो साल
0: जी जी
1: ऐसा बात है
0: जी जी जी
1: वो स्टीम से थी
0: ठीक
1: तो मैं कहना था मैं ठीक वहाँ एक मीनारा है वहाँ से गिरी शहीद हो गए और मैं मदरसे में था फिर हसनिया उसके बाबा इमाम गायब हो गया
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: कहते हैं इमाम गायब
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और साहब जमान
0: जी
1: बहुत कुछ करते
0: उनका पर अच्छा
1: कि जो वहां से वो गायब हो गए वहां उस गार में
0: ठीक
1: ठीक दूर से आया हूँ तो आप
0: अच्छा
1: निकला तो जो है कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जब मुझे किसी ने कहा कि कुछ तुम्हारा कुछ लगता है तो वो तारी तो मैंने कहा उसे नाम तो लेकिन खैर चले गया
0: जी जी जी
1: मगर ताला लगा हुआ था वहां से वापस भागा और आकर मैंने क्या बताएंगे थाने ले गए वो शुरता
0: अच्छा अच्छा
1: और शुरता जाकर जब मैंने देखा तो उन्हें
0: सामने भाई साहब आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कारी मोहम्मद सदीक साहब माशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगु हो रही है अभी ब्रेक का वक्त आ चुका है लेकिन बात थाने पर पहुंचाई है कम से कम उम्र में भी माशाल्लाह इन्होंने वो जोर दिखाए कि जो कभी सोच भी नहीं सकता अल्लाह ताला इनको मजीद सेहतियाब करे अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद जरूर टच फोन कीजिएगा
2: लिसन टू लिंक एफएम ऑन द मूव बाय डाउनलोडिंग द लिंक एफएम ऐप
3: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield.

0: जी। अच्छा
1: अच्छा
0: अच्छा

0: في المدرسة تعطي زعب لوجهتي وخطنا
1: جي
0: يوم

0: कारी साहब, ये तो उस वक्त की, क्योंकि आप 20
1: अच्छा ठीक जी बात बता रहे हैं।
0: अच्छा

0: mukaddes yerken kalktım yatağında böyle. Sonra
1: Bilkul.
0: Mesela
1: Açan.
0: Settlement.
1: For settlement. Acha. Usi wagon wahi sahi. MashaAllah.
0: अपने कार फिर सवा फिर पारस आता था
1: ठीक
0: फिर पारस इधर तो चक्कर की करवा तो बोलो क्यों जा
1: अच्छा माशाल्लाह हाँ तो ठीक
0: कम स्पर्श कम
1: जी
0: तो सही जगह पर मैं बाहर आ रहा पुकाराची
1: अच्छा
0: उनके पास तो यदि गया आज वापस आ जाओ क्या
1: जी जी जी वो क्या 64-65 का दौर हुआ होगा
0: हाँ
1: किस दौर में आप यहाँ बर्तानी में आए
0: बर्तानी इसी पर आ रहा हूँ
1: ठीक
0: तो और वहाँ से तो आप
1: अच्छा बिल्कुल
0: तो हो गए हमारे
1: अच्छा
0: कुछ हमारे वीर से मशहूर था वो हजरत करीम तो जब मैं आया तो मैं बैठा हुआ था ऐसे अब वो तो कहीं
1: अच्छा
0: रहता था
1: अच्छा
0: वो बड़ी ठाट वाली चार सौ चार रहता था चल माता हूँ कभी कभी कहता अरे बाबू जब
1: ये बात जी
0: किसने बात किया क्वीन से तो 67
1: हाउस स्ट्रीट वाली
0: हाँ
1: 67
0: की बात है 67 की बात तो जो का
1: अच्छा
0: हलाले का वो मुसलमान
1: जी
0: तो उसके वो जो लेंगे
1: दखेंगे पैसा
0: अच्छा तो मैं हाँ वो था तारीख था।
1: अच्छा ठीक।
0: अब मुझे बुलाया जाओ तो काम मजाक
1: जी जी जी
0: आपको जो करते
1: लफड़ों में मैं नहीं बढ़ना चाहता
0: तो
1: अच्छा
0: उनको सुनो तो देंगे आप क्या करेंगे
1: दे दे दे
0: मानो ये हमारी पार्टी है ना कि ये फलाना है फलाना है ये इसमें निकालो ये जहन में न हो पहले जब मैंने बच्चों को पढ़ाया
1: जी जी जी जी
0: आपके भगवान करो नेक्स्ट बैंक
1: अच्छा
0: तो हम बता दिया वहाँ तो
1: चार एक लाख अच्छा इसी में लेके जाऊंगा अच्छा
0: आपको शाम को खाने खा रहे हैं तो वो काम
1: समय अभी ये चौधरी बोलसान साहब की बात कर रहे हैं बाबू ओके
2: Listening to Link FM.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
5: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busy solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billouts Road, Sheffield or call 0114-308-2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
7: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

0: 構成を、ホールスケジュールで
1: 落ち
0: る出てきあんまりやだ
1: 落ちる

0: जो प्यारी थी, बहुत प्यारी, क्या बताएं उसकी, उसकी अखलाक जो इस किस्म की औरतें आती थी उसके पास।
1: अच्छा,
0: आप मेरे मेहमान
1: टेलीफोन पे देखते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु।
2: सब ठीक ठाक हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी जी जी जी जी शाही जी वाले
2: कारी साहब ने बड़ी थैंक यू करना के मेरी जिंदगी चलाया उन्ना असामियां सारी कम्युनिटी वास्ते ज्यादा आंदियां ने।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: असानी लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप है मेरे वालिद साहब नाल ते वालिद साहब इस्लाम दुआस करने थैंक यू करने उन्होंने फ्रेंडशिप ने ते उन्होंने कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी विच जरा काम उन्होंने किया। मैं खास कर याद रखना के पीएमसी प्रोजेक्ट ग्रुप विच मैं यूथ हनी तरफ था।
1: जी जी बिल्कुल
0: काम कर
1: जी जी जी यही बात है। व्हेन शायद साहब जिस वक्त आजी साहब कारी साहब हमारे स्टूडियो में आए ना तो सबसे पहले जब जब उन्होंने नाम लिया ना वो हाजी नजीर साहब का लिया था। कह रहे थे कि इस कमरे में बैठे इस कमरे की बात हो रही थी, कह रहे थे कि यहाँ ही वो उस वक्त कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी तो हाजी नजीर साहब का नाम लिया। माशाल्लाह दिल के साथ आपका उनका लगाव है। And you're right, actually, these people that change the world for us.
2: Legendary people, you know, they are remembered throughout history.
1: True.
2: Inshallah, you know, so in the story, you know, elders, their contribution, you know, we will remember for the rest of our lives.
1: Inshallah, inshallah. ये शायद उनके बेटे हैं, शायद है, शायद नजीर उनके बेटे हैं। जी बेटा बात है,
0: शायद
1: उनका बेटा आज नजीर साहब का साहबजादा। ये बात है
0: थोड़ी सी पैसे में
1: बहुत बहुत शुक्रिया। अभी करी साहब अपनी गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर रिंगिंग थ्रू, रियली अप्रिशिएट इट। जजाक जी करी साहब उस वक्त बात ये कर रहे थे लीड्स की बात
0: जी पाकिस्तान से दोबारा एकदम हो गया
1: जी जी
0: सबसे बड़ा सब
1: हुआ। अच्छा
0: तो सत्रह तारीख को उनका इंतकाल हो गया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
0: चुके थे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: तो फिर
1: अच्छा।
0: वो कट गई जब पैसे जाएंगे
1: जी
0: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: मियाँ खान साहब थे वो
1: बेचारा मसरूफ
0: वापस आप पैसे तो नहीं कि दूसरे
1: अच्छा
0: तो इनको नहीं
1: अच्छा अच्छा जो आपके जगह मुतबादला
0: हाँ हाँ
1: ठीक
0: तो वो कर आप यहाँ बना दे मैं दूसरी वैसे उसको
1: जी जी जी जी
0: जरूर
1: ये बात है
0: अनएम्प्लॉयमेंट
1: बेनिफिट
0: वापस चले गया
1: ठीक अच्छा फाउंड्री में गए ये कौन सा भाग बिल्कुल बिल्कुल वाली नहीं है
0: तो उन्होंने कहा ठीक है अंदर आ जाओ से काम तो उसमें हैरान था
1: अच्छा अच्छा
0: बुला रहा था
1: अच्छा
0: तो देख रहा था
1: है कहते होंगे ये कौन से आ गए जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: साथ उसने मदद की क्या तो अब जा रही हूँ
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैसेज देखकर
0: तो वहाँ एक जा किया तो आपको ठीक कर दूंगा मैं वो ठीक तो वो हमने चलो तो कि जो हमसे कहा वो
1: जी जी जी
0: तो मैं कहा देखो ये कुछ काम सीखे होते हैं वो चलू तो
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: देखो ना ध्यान भी देता है
1: जी जी जी अच्छा वो प्लेट फूड आपके पास
0: हमारी मर्जी खा और आप यह काम करते हैं अब आगे नहीं तो अब हमारे पास आ गए मैं यार मैं काम करता हूँ छोड़ो है अच्छा अब मेरे पास पैसे भी आ गए तो उसके बाद फिर सो
1: गया
0: तो दीप ने सारी जिंदगी किया है अब आजाद में वो लमा है तो ये मस्जिद नहीं छोड़ सकता
1: माशाल्लाह
0: तो मैंने वो तब उसने छोड़ा मुझे
1: अच्छा अच्छा
0: मैंने कहा देखो ना काफी मजे
1: हाँ बिल्कुल जरूर बन गई ना कर लिया
0: अपने काम
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: बाकायदा तो हाँ आया जब हो जा रहा
1: है आजी साहब साहब की बात करने से पहले आपके लिए कोई मैसेजेस भी आए हैं कलीम खलील साहब उन्होंने आपको सलाम भेजा कहते हैं माशाल्लाह
0: अच्छा।
1: लवली प्रोग्राम शायद मजीद साहब उनके साथ बात भी हुई है लेकिन वही है अगर कोई और कहते हैं सुभान अल्लाह लवली प्रोग्राम और तीसरे हैं नज़ीर लाया नज़ीर इन्होंने आपको सलाम भेजा कहते हैं बहुत बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है थोरेली एंजॉय द प्रोग्राम अल्लाह ताला इन सबको आप शुक्रिया आप बड़ी मोहब्बतों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी जी हाजी जाफर साहब की बात
0: तो अपने कभी वास्ते कि वो तो हमारे
1: जी जी जी
0: बिल्कुल मालूम तो नहीं
1: हाँ
0: خیرات کرو سر پکو اپنا یہی تھا تو حساب سے میں نے یہ بات ایسی ہوں ہمارے
1: بالکل ہاں کپڑا وہی
0: ہے تو تم بھی چائے پیتے ہو نا
1: یہ بات ہے
0: ٹھیک ہے پٹھان تھے گا

0: Kata Manu tie.
1: To.
0: Gdzie?
1: To. Ja. Zasadki. To ja. Ale co go bolę chcę.
0: Gdzie?
1: Super. Вот как
0: Ача.
1: Не. Фиги, ну, кажется. Я вообще сапот. Не. Ты
0: अच्छा
1: ये पढ़ाई
0: ठीक
1: इससे पढ़ाऊंगा कोई तनख्वाह वनखा नहीं दूंगा अपने इमाम का काम करो अपने इमाम मिलाओ
0: बंदोबस्त कर लो
1: बात खत्म हो गई वहां मैंने तकरीर अंग्रेजों के साथ कि हम मुसलमान हैं इसलिए पहले जब मैं उस मस्जिद में तो
0: सिर्फ मिर्ची ढूंढे के डॉक्टर के पास जाओ अच्छा मिर्चे क्या मिर्चे अच्छा करी साहब आप उसके बाद चैपल वॉक मस्जिद में आप वहां इमाम खतीब रहे क्योंकि वो रात
1: बख्शे बड़ा अच्छा आदमी था तो मैं क्या करूंगा मैंने कहा मेरे को पैसे लेकर वापस आ जाए
0: जी
1: तो
0: अच्छा
1: औरतों की शर्म टाइट होती थी तो छोटा सा बक्सा तो वो यहाँ रावण आ गए तो
0: अच्छा
1: वो गाड़ी साफ थी तो वो क्या
0: अच्छा
1: तो अब क्या वो टाइट तब
0: अच्छा
1: अब राजी तो वो
0: अच्छा
1: उसमें
0: अच्छा जी
1: जी
0: तो ठीक ठीक
1: उसको फिर मैंने कहा तो सर इट इज वेरी टॉकिंग टू यू तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच इसको तो चाहिए
0: ब्रेक का वक्त आ गया अभी फिर मिलेंगे
2: difference in someone's life. Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center.

0: अच्छा जी
1: जी
0: जी जी थोड़े थोड़े ऐसा रास्ता तलाश करें जो अमन का रास्ता हो। जी जी जी जी जी जी नहीं नहीं
1: नहीं तो किया तो मैंने उसको समझाया, बहरहाल तो बच्ची थी समझ गई, छोटी तो 6-7 साल की थी। तो उसके बाद
0: ठीक
1: तो वो 25 साल 18 साल और बहुत तंग किया इसको का तो कहने जी मैंने कहा ओके इस पर मैं तो मिसअप कर गया जो सिर्फ चीज तो सब पर मैं तो ये जीब नेक्स्ट डोर
0: अच्छा
1: मौसम पर कबाब चल मैं
0: बिल्कुल अब तुम करो कुछ
1: तेरी ऐसी की तैसी अब तो
0: जुबान में एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ अपने नहीं होते
1: आयुष महल साहब को जो मैंने मन किया कि छोड़ो सेशन तो मेरे उनसे झगड़ा पुलिस मेरे को और फार तो इस पर मुझे गुस्सा आया मैंने कहा देख माय हाउस आई डिड नॉट गो टू देयर हाउस asking me for medicine for crime.
0: ठीक
1: वो आपने कहा सुन चिप आप शफीर
0: अच्छा
1: जो गुस्सा है जो से शाल मिल सुन तो या तो एक और भाई सार जान कंधे पे हाथ रखा मैं से सुनी आई डोंट टॉक प्लीज कैन टॉक प्लीज ठीक है अब चलता हूँ पुलिस वाले कहा just as you brought from me there, then I will sing so to see my solicitor. Right? And I'm going to do against all of them.
0: Tika.
1: Because they attack me in my home. Or disturb my family home.
0: Harass kar rahe.
1: So bar half. Thodi bit soch kar. Ab
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल रुख बदल दिया
1: मसाप हाँ फ्यूचर
0: हाँ क्रेडिट
1: ये दा दा सो
0: फिर डील हो जाती
1: है हाँ हमने ट्राई दिया फ्यूचर
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कंप्रोमाइज़ किया आपने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: आप इधे विल कम दिस साइड दे गारंटी मेरे को वर्ल्ड थैंक यू
0: अच्छा
1: अच्छा अच्छा हाँ आप माय फिल्डर एज वेल ओके हाँ दिस इज योर फ्यूचर
0: आप बेशक वो नादानी कर रहे
1: हैं
0: हाँ जी जी जी
1: पर यार
0: इस तरफ नहीं आए माशाल्लाह साहब माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं जी जी जी
1: और बेटी मेरी फौत हो गई
0: जी जी भी नहीं
1: आया अल्लाह बख्शे और एक लड़का है अमर
0: माशाल्लाह
1: और एक जी जी
0: जी जी
1: इससे मुझे बहुत ही प्यार था 10 साल हमने लाहौर में गुजारे इसी सेंकाली में क्या जिंदगी थी यार लोग जो पहले कहते थे मिसालें देते थे और
0: अच्छा
1: तुम बैठे
0: अच्छा
1: तो मैं ऐसे कह रहा हूँ तो देखो ना कितनी खूबसूरत मस्जिद है तो वो नहीं
0: अच्छा
1: मैं फिर कह रहा हूँ देखो ना कितनी खूबसूरत मस्जिद है तो वो नहीं देख रहे फिर मैं क्या मैं भूल लगी हूँ तो
0: अच्छा
1: शादी की है लेकिन
0: जी जी जी
1: लेकिन मेरी भाई बहन मुझे भी लगती है, तो मिजाज वो मेरी तबीयत के मुताबिक था। अल्लाह इसने मेरे साथ दिया हर तरीके से।
0: जी जी जी देख देख ये बात है।
1: घर
0: जन्म बन जाता है
1: को बता रहा।
0: अल्लाह ताला हर अल्लाह ताला उन अपनी अपनी जो उनकी जोजा है उनकी भी जो हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दोनों तरफ ये चीज चलती है, एक तरफ नहीं होती है तभी ये गाली चलती रहती है। करी साहब आपका माशाल्लाह जो रोल मैंने देखा है, मैंने पाकिस्तान सेंटर की भी बात की, मसाजिद की बात की है, कॉमर्स की बात की, पुलिस की बात की, हर जगह आप मुतरक रहे हैं क्योंकि एक कौम की खिदमत करते रहे। लेकिन वही चीज़ मैं भी देख रहा हूँ कि आपके और बच्चों में नहीं लेकिन आपकी बेटी में शायद हमें ये चीज़ पाई जाती है, वो एक बड़ी फिक्रमंद रहती है हमेशा कौम के मुतलक और बड़ी होनहार बेटी है। अल्लाह ताला उसे कामयाबियाँ अता फरमाए।
1: खैराती करता रहता है
0: माशाल्लाह।
1: एक दफा सुना दिया मुझे
0: चले जाते हैं
1: आपकी दुकान आपकी दुकान आपके बाद
0: वो आप रिटेलिंग करते रहे वो डिटेलिंग करते रहे। आप हमारे लिए एक बहुत ही कीमती सरमाया है। यकीन मानिए कि जो मैं अब आज आपके साथ जो पर्सनल जो चीज़ें शेयर करता हूँ, हमें याद है कि एक वक्त ये था कि यहाँ जब पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर में जो मामलात वगैरह चलते थे उस वक्त कोई ऑफिसरान यहाँ शामन उनका नाम तो नहीं मैं लेना चाहता था, लेकिन आपने जो जुर्रतमंदाना उस वक्त जो जज्बे और उसको ऑफिसर कहा कि जो मर्जी हो जाए जो मर्जी हम इस चीज़ को ना देने वाले ना छोड़ने वाले हैं, जो कुछ करना है आपने कर लो। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हम ज़रा छोटे थे हमें भी उसमें बड़ी एक हिम्मत मिलती थी कि कोई ऐसे हमारे साथ पीछे है कि जो अगर मुश्किल वक्त आया तभी हमारे साथ ये हमें जाना।

0: जी,
1: शासन वहां साहब थे
0: जी,
1: मस्जिद वो जोगा थी
0: जी,
1: वहां पर इमाम थी ना, तो वो राज्य गए थे
0: जी,
1: वो कर रहे हैं बड़ा, तो वहां तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं कर, ऐसे कर,
0: लेता
1: कुछ नहीं कर सकता तो मस्जिद में आपको
0: मुझे पता है, दीवार के मुताबिक पता था, ये नहीं पता आप

0: Jujur-jujur.
1: Mesinnya apa aku cip? Hapusku aksesnya.
0: आधे इधर पड़े आधे वो तारीख में ये चीजें पाई जाती हैं। मैं समझता हूँ कि हर अंधेरी रात के बाद फिर सुबह होती है। कारी साहब अभी प्रोग्राम का वक्त 2 घंटे हो चुके हैं, आप अपने अखीले अल्फाज अदा करें।
1: सब इस बात पे आता हूँ, एक बता देते हैं
0: जी।
2: Difference in your community. Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre

अस्सलाम वालेकुम सभी ग्राम, एक बार फिर कवाली प्रोग्राम के साथ में हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। यह है कवाली स्पेशल और आपका और मेरा साथ होता है हर रोज सुबह, और आज भी आपका और मेरा साथ शुरू हो चुका है और ये साथ चलता रहेगा इस कवाली स्पेशल में। और आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह एक खूबसूरत कवाली से।

कवालियाँ अक्सर बहुत ही खूबसूरत होती है और बड़ा ही बड़े इनमें एक मैसेज होता है, तो आज भी मैंने आपने ये कवाली सुनी और इसके बाद आपके लिए एक और कवाली पेश करते हैं, ये सुनिए। और हमेशा की तरह ये भी शायद इतनी ही लंबी होगी कवाली और ये हो सकता है कि हमें कमर्शियल ब्रेक की तरफ ले जाए, अगर ना भी हुआ तो हमारी मुलाकात अब ब्रेक के बाद ही होगी।

0: name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning कांटेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Sheffield's very own community radio station.
10: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
11: और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह

वेलकम बैक खुशामदेद, जिनमें अभी ज्वाइन किया ये एक वाली स्पेशल, और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। और क्योंकि वक्त था ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, स्टे ट्यून्ड। और ब्रेक के फौरन बाद अब चलते हैं हम अगले कलाम की तरफ।

0: listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती है और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती है। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations.
0: 96.7 Link FM.

0: name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Sheffield's very own community radio station.
10: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudashir.
3: This is Rahul.
11: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
11: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.

0: कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है। आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर एफएम 105.1।
1: Inspired. Inspire FM.
2: I have a

Sí,

0: 07419-299-729.
1: Nayard's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayard's Takeaway.
2: Mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइम गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया है द क्लेम टीम तुसने खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम या गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसने की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 033-00-571-009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
6: 07939-849-339. Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua, ye toota dil mera tadpata hi raha hai sada.
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abed Rahman.
10: My name is Shai Mudashir.
11: This is Rahul.
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.
12: Aap sun rahe hain Link FM 96.7.

अपार्टमेंट होए में समय हो गया है पंजाबी विरसा प्रोग्राम का 6.7 तो पंजाबी विरसा प्रोग्राम विच तुहानू सारयां नू बड़े ही प्यार नाल जी आया कहिंदे है सरबजीत सरबजीत वालों कबूल करो जी बहुत बहुत प्यार अते मोहब्बत भरी सत श्री अकाल अदाब नमस्कार एंड गुड इवनिंग

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कांटेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
4: Real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abed Rahman.
9: My name is Sai Mudassir.
10: This is Rahul.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.

0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
1: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
2: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग वाले खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब है नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ता एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ता भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 07931737547
3: या 07784850934.
4: Do you ever find yourself lonely or isolated? Or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
5: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक एफएम दिल से आपके साथ
6: लिंक एफएम शेफील्ड
7: तू सबका है खुदा तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा तू सबका है खुदा तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
8: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ।

0: 07419 299 729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub with an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइम की गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया तो द क्लेम टीम तुम की खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम.
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
6: 07939-849-339. Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua, ye toota dil mera tadpata hi raha hai sada.
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abed Rahman.
10: My name is Sai Mudashir.
11: This is Rahul.
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.
4: 96.7 Link FM.
12: Link FM.
13: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: माफ कीजिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें ज़रा आपको म्यूज़िक की तरफ जाना पड़ा। हम फिर वापस हाजिर आ गए आपके प्रोग्राम के मुताबिक। इंशाल्लाह आप ही आएँ और इन्जॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। हमेशा की तरह यही आपका अपना प्रोग्राम, पसंदीदा प्रोग्राम आज भी शामिल यहाँ से चल रहा है लिंक FM 96.7 से। जो प्रोग्राम की नवीयत क्या है वो ये है कि शाइनिंग स्टार्स के हवाले से मैं आपके साहब को ज़रूर ये कहना चाहता हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर नज़र हुसैन साहब। उनके साथ बड़ी प्यारी बातें होंगी, उनकी जो तालीमात हैं, जो गुफ्तगू है, उनके मतलब भी बात होगी, वो क्या चीज़ करना चाहते हैं। अगर आपने भी हमारे साथ शामिल होना है तो ज़रूर टेलीफोन कीजिएगा 0114-261-8181। इंशाल्लाह जो प्रोग्राम हमेशा हसब मामूल खूबसूरत और अच्छा होगा। हमारे गेस्ट, उनका मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हुए हैं। तो कुछ बातें होंगी, देखते हैं ये इनके साथ क्या गुफ्तगू होगी, आप भी इंजॉय करेंगे। लेकिन इनके साथ बात करने से पहले मैं जितने नौजवान हैं इस वक्त जिन्होंने इम्तिहान दिए हैं, अपने इम्तिहानों और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब को मेरी तरफ से इन एडवांस मुबारक भी हो और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए। क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिस वक्त आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, फिर रिज़ल्ट पे होता है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे आपने कौन से ऑप्शन हो। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे जो नौजवान जो बच्चे हैं, बहुत ज़हीन बेटे और बेटियाँ हैं, इंशाल्लाह हमेशा की तरह कामयाबियाँ हासिल करेंगी। जो जिनके रिज़ल्ट किसी वजह से अच्छे नहीं होंगे, मायूस नहीं होना। मैं आप ही छोटे हैं, उम्र बहुत है, बहुत सारा सफ़र आपने तय करना है, लेकिन फिर इंशाल्लाह फिर यहाँ से आगे भी आपको कामयाबियाँ ज़रूर होंगी, जैसे अभी भी हैं और पैसे भी होती रहेंगे। मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ प्रोफेसर मज़र साहब। प्रोफेसर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आप हमारे स्टूडियो में आज यहाँ पहुँचे हैं। सफ़र कैसा रहा आपका?
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना वबरकात। तो माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा, एक खैर के लिए सफ़र हमेशा खैर का ही होता है, अंडरस्टूड बात है। तो दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह ये फिक्र थी कि हम प्रोग्राम पे वक्त पे पहुंच जाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज जिम्मेदारी होती है क्योंकि मैं टाइम में वहां पर पहुंचना, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन सी थोड़ी सी।
0: प्रोफेसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टूडियो में पहुंचे हैं, साथी जो बेताबी से आपका इंतजार भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। प्रोफेसर, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। बेशुमार लोग मेरे जैसे जो नासमझ लोग हैं वो तो चलो कुछ जान चुके हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि लोग ये जानना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान कहाँ से आपका ताल्लुक है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ताल्लुक गुजरात है, पाकिस्तान में यानी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में ही आता है ज़िला गुजरात, और वहाँ सिटी में मैं रहता हूँ, साइंस कॉलेज के सामने।
0: अच्छा,
1: गुजरात पाकिस्तान, नॉट इन इंडिया।
0: कल मैं किसी नौजवान के साथ बात कर रहे थे, वो कोई इलेक्ट्रिशियन थे, तो उन्होंने एकदम मुझे बताया गुजरात, तो मैंने हिंदुस्तान वाले हैं या गुजरात हिंदुस्तान वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं आप फिक्र गुजरात है, यहाँ हो वहाँ हो अपने भाई हैं।
1: जी ऐसी बात है,
0: कोई
1: जी मोहम्मद अली साहब से मेरा

0: अच्छा, वहीं वहीं रही है
1: इस कर के।
0: आपने मैट्रिक की एफएस की,
1: हाँ।
0: कोई अरमान शौक थे, क्या करना चाहते थे?
1: हाँ जी, उसमें यह है

0: workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चा
1: सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पर्ल बेकर्स, 640-24 रोड, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 01142-966092। पर्ल बेकर्स।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: Listening to Link FM.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: समय ब्रेक के बाद हम हाजिर हुए, यही कर रहे थे कि टॉप टॉप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियरिंग कॉलेज गए, वहाँ भी उन्होंने टॉप किया और अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल में जाते रहे, कामयाबियाँ हासिल करें। अल्लाह ताला जिस पे करम करता है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए कामयाबी होती है, कामयाबी छोटी हो या बड़ी हो। मैं प्रोफेसर आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि हम बरतानिया में अभी स्कूल्स में ग्रेजुएशन तो हम भी करते आए हैं, देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन हुआ करती है, लेकिन अभी यहाँ बरतानिया में जो नर्सरी क्लासेस और रिसेप्शन क्लासेस जिस वक्त एक ईयर से लेकर और जो स्कूल में जाते हैं उनके ग्रेजुएशन की जाती है, ताकि वो बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हमने कोई चीज़ कामयाबी हासिल। मुझे भी इस चीज़ का इत्तेफाक हुआ, मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरा नवासा उसने उसकी नर्सरी की जब इस्लामी नर्सरी है वहाँ उसने जब मुकम्मल की तो हमें बेटी बताने लगी, अबू आपने आना है कि छोटे की ग्रेजुएशन। मैंने कहा वो छोटे की ग्रेजुएशन, लेकिन बिल्कुल ये थे तो जो खुशी वो चीज़ देखी, लेकिन इस कौम ये तैयार करती है, बच्चों को तैयार कर देती है कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है, ये तुम्हारा टेस्टर है
8: माशा।
7: और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ा प्यारा माहौल, फिर वो पूरा उन्होंने हेड पहना हुआ, गाउन पहना हुआ, वो तस्वीरें क्लास ऑफ उन बच्चों की क्लासेस की तस्वीरें लेते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि जिस वक्त आपको अल्लाह ताला चुन लेता है कोई चीज़ करने के लिए, ये कदम है आपने उठाने, कदम आस्ते आस्ते उठाते उठाते अपनी मंजिल पर पहुँचे। लेकिन दिलचस्प ये बात रही है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग से लेकर ये सारा रुख आपने बदल दिया। इंजीनियरिंग
8: ये है कि हमारा जो गांव है ना, जहाँ मेरी रिहाइश यानी बाइक या मेरी बर्थ हुई बोला, उसके साथ समा गांव है, बड़े चौधरी अनवर समा पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े वेल नोन मिनिस्टर भुट्टो के राइट हैंड के तौर पे, उसके मर्डर भी हुआ तो उनके भुट्टो खुद वहाँ पर फातिहा के लिए भी आया। वो तो बेटे शाह अब्दुल रज़ाक
7: माशाल्लाह,
8: तो उनका

0: होते हैं और अपने कदम जो नहीं आहिस्ता आहिस्ता रख रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी जगह कोई खुता ना हो जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी ना खुता हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस वक़्त कोई चीज़ इंसान अपने दिल से और मोहब्बत से हुब्ज़े करता है वो सही उसमें डिलीवर भी करता है, क्योंकि आपको एक शौक था। अमूमन जो देखा गया है कि जो बच्चे जो मज़हब की तरफ जाते हैं घरूला उनका माहौल ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, बाज़ वक़्त बड़ी फैमिलीज होती हैं ऐसे ही जो नहीं बच्चे वहाँ आस्ते आस्ते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया होता है उनसे
1: ऐसी खिदमत करने के
0: लिए
1: बात है।
0: लेकिन जिसके लिए हर अपॉर्चुनिटी हो लेकिन हर चीज़ बोल सकते हैं तो सारी चीज़ ठुकरा के वालदैन किस वक्त फिर वापस रजिस्टर हुए कि ये मानता नहीं है।

0: और फिर
1: डॉक्टर साहब के साथ कितने अरसे की गुर्बत है?
0: 18 जी जी इतना
1: यूनिवर्सिटी डॉक्टर साहब का आपके बहन भाई माशाल्लाह कितने हैं?

0: उनसे छोटे भाई थे वो एयरफोर्स में, और तीसरे कुवैत में थे। तो एक दो सिस्टर्स हैं, एक टीचिंग लाइन में है और एक जो है वो भी टीचिंग, लेकिन वो सब शुरू में तो भाई ने डिसलाइक किया कि नहीं नहीं हमने नहीं सरे। तो
1: अपनी फैमिली

0: साहब, अगर बरतानिया में देखा जाए ना, कि एक तो जो जो चाहे वो इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बैंकर्स बनते हैं, अकाउंटर बनते हैं, एक तो एक ऐसा ही शोभा है, लेकिन इसके साथ यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे भी अप्रेंटिसशिप लेके आए हैं। अप्रेंटिसशिप क्या है कि जो इंसान कोई और चीज़ करना चाहता है वो भी करे, लेकिन आप उसके साथ अपना एक और हुनर आप वो तलाश कर लें।
1: yes.
0: अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है बनिस्बत और उन चीज़ों की, क्योंकि वो तो एक डे टू डे एक सिस्टम है, लेकिन इसमें जो आपका शौक है वो भी पूरा हो रहा है, आपके मामलात भी
1: ऐसी बात है।
0: तो दीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा

0: पहला मैच। उम्र कितनी होगी उनकी?
1: उम्र 60 से ऊपर होगी।
0: एक शौक पैदा हुआ,
1: शौक पैदा हुआ, इसे

0: ठीक है।
1: जी, ये बताए। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर कुछ कुछ बिला वजह एक प्रेशर भी रहता है, क्योंकि वालदैन भी कहते हैं जी इतने साल हो गए आपने कोई मुकम्मल किए। सामीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर मजर साहब मौजूद हैं, बहुत ही दिलचस्प बात हो रही है, आपने भी शामिल होना था। जरूर टेलीफोन कीजिएगा 0414-261-81। अभी कुछ मैसेजेस पर आए हैं, ब्रेक के बाद ये भी पढ़ते हैं।
2: Listening to Link FM 96.7.
3: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
4: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज, फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है, तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
5: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है, ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Sheffield's very own community radio station,
8: Link FM.
9: My name is Shireen.
10: My name is Abed Rahman.
11: My name is Saeed Mudassir.
12: This is Rahul.
7: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
8: Link FM.
3: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
13: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: सकते।
1: प्रोफेसर साहब, अगर कोई भी अगर सामने इस को सुन रहे हैं, वो इस चीज़ का शौक रखते हैं,
0: जी जी,
1: उन्हें क्या करना होगा,
0: कैसे? सर,

0: ठीक है।
1: ठीक
0: ठीक
1: है
0: है।
1: ठीक है। ए व्हाट्सएप कॉल,
0: व्हाट्सएप।

0: ये बात है, ये बात है। लेकिन अगर देखा जाए बरतानिया, बरतानिया की बात करूँ, यहाँ एक जनरेशन चेंज आ चुका है। हमारे जो यहाँ जो बच्चे हैं, जो इस वक्त जो बच्चे हैं जो परवान चढ़ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं।
1: ऐसी बात है,
0: रिकनेक्टेड, उनको वापस रिकनेक्ट करना, वो क्योंकि अपनी ज़बान वाले उनको मिल नहीं रहे, तो वो ज़्यादातर जो नहीं, चाहे जो गूगल मुफ्ती उनको मिल रहे हैं, या कोई सऊदी अरब में कोई शेख उनको मिल रहा है, कोई ओमान में मिल रहा है, उस तरफ ही रुजू कर रहे हैं। लेकिन बड़ी आसानी तरीके से, बड़ी आसानी तरीके से ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी अबूर है, अरबी में भी अबूर है, इंग्लिश में भी अबूर है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: आपके पास कोई स्टूडेंट आए जो चाहें कि जी हम ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गिव माई 15 मिनट्स अ डे, या जितना भी समय लें, है कि नहीं, तो अगर उन्हें ज़रूरत हो कि आप इंग्लिश में उनकी इमदाद करेंगे, पूरा कर लेंगे,
1: कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कोई

0: अब उनकी मदर है। मामला यह है कि आंखें नहीं ना खुली हुई बंदों की। अल्लाह मैं तो कहता हूं कि वो कोई कमी नहीं रहने देते।
1: चलो ऐसे करते हैं प्रोफेसर साहब, आप आज यहाँ कैंपस स्टूडियो में मौजूद हैं, बेशुमार साथी भी सुन रहे हैं, मसाजिद हैं, उनमें भी कैसे कितने दोस्त अहबाब सुनते होंगे, और उनसे ये अपनी तरफ से एक वादा लेते हैं कि चलो थोड़ा सा टेस्ट टाइम कर लें। टेस्ट टाइम आप एनरोल करें, दो हफ्ते कर लें, तीन हफ्ते कर लें, जितना भी टाइम है, अगर उसमें फील करें कि मुझे चिप आउट,
0: ऐसे
1: छोड़ के चले जाए,
0: ऐसी बात नहीं, बिल्कुल।
1: अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह साथ जो नहीं आखिर तक चलेगा
0: जी। से काम ले, लेकिन शैतान का बुक मैं आपको बहुत मुश्किल है। देखिए ये

0: जी जी माशाल्लाह
1: जी। तो

0: Eyvallah, maşallah, maşallah. प्रोफेसर साहब, ये तो बातें बहुत काफ़ी हैं सर. आप आज कोई ऐसी चीज़ अपना कोई वज़ाइफ देना चाहते हैं जो हमारे सामईन जो इस वक्त अपने हफ्ते के लिए किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ आज तोहफा देना चाहते हैं जो लोग अहले शेफील्ड रदरम के
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक है

0: दिल से मांगे और साथ रोए
1: रोए अगर
0: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब बहुत

0: चलो वो भी कोई चीज बता दे, बताया था आपने कि दिल सिंह तो है नहीं है, कोई ना कोई चीज होगी जब शैतान को उसको किसी जगह हम बांध सकें ताकि
1: उसके लिए भी
0: जी जी बस सब खत्म होने वाला है।

वो सर मैं थोड़ा सा माजरा चाहता हूँ, इधर उधर थोड़ा लेट हो गया हूँ। बात सर में जो कर रहे थे कि जो वो पहले जनरेशन और आज की जनरेशन, पहले वाले लोग, आज के लोग जो कमी पेशी जो है वो मैं समझता हूँ उस वक्त जो थी वो बड़ी पूरा असर बात होती थी। अगर कोई एक आदमी बात कर देता तो पूरा उस पर असर पाया जाता था, शायद पूरे मोहल्ले के अंदर उसका असर हो जाए, गांव के अंदर असर हो जाए। इस तरीके से शायद वो भी जो है वो उनकी बात को सुन। इसी तरीके कहने का मकसद यह कि वो लोग जो थे उनकी जुबान में तासीर थी, आज हमारी जुबान में तासीर नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या है, इस नुक्ते को हमने समझना है। असल में बेशुमार वजूहत हैं, लेकिन चलो चंद बातें जो हैं वो जरूर अगर हम अपने आप पर गौर करें। एक तो ये है कि हमारे अंदर खलूस जो है, हम कोई भी बात जो करते हैं कुछ वो उसके अंदर खलूस नहीं है, नेक नीति नहीं है। हम जो है हमारा मकसद जो है वो बात खलूस से दिल, खलूस से दिल से बात करने का मकसद ये है कि आदमी जो है वो एक टोटल और टोटल यहाँ से मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा मकसद और मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए। जो पैगाम जो है मैं सिर्फ बात जो है यहाँ तक जो है वो मैं जो समझा हूँ कि बात का मैं कि इस चीज को आज तक पहुँचा हमारा मकसद कि जो और आसान अब जो

नेक नीति जो है वो ये है कि खुलूस दिल से उस आदमी को ना कोई लोस लालच हो, ना कोई आदमी जो बात करने वाला मुझे ये कहते हैं ना बे, ये तो इतना बाल लफ्ज है कि मैं तो उसका कहता हूं कि इन लोगों को कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेलोस की आदत या बे किसी बंदे के अंदर अगर किसी किस्म का कोई लालच ना शोक का, इज्जत का, तकीर का,

से एक तो ये मारे उसके और खास तौर पर और ये पढ़ी लिखी इसको अगर कर दू तो बेशक कर दू, लेकिन इसलिए ये बात कि जो आदमी इल्म जो है इल्म सीख उसकी खलूस से प्राप्त

are tum tarasate gulistan behknar ab talak yaar।

उनकी, ये असल में जो मैं बात कर रहा था कि हमारी बात जबानी कलामी है, हमारा अमल नहीं है। तो अल्लामा साहब ने 100 साल पे ये उन बुजुर्गों का और उन आपके अपने दौर के, और आज हम वो अपने आप के दौर कि उन लोगों की क्वालिटी क्या थी और हमारी क्वालिटी, उन लोगों की खूबियां क्या थी और हमारी खूबियां क्या है। बाकी तो ये चूंकि ऑलरेडी जवाब शिकवा पेश किया जा चुका है, ये तो सिर्फ एक मिसाल देने के लिए और समझाने के लिए, और मेरी जो बात है उसका वजन बढ़ाने के लिए मैंने ये पेश किया है कि आज अगर हम कोई बात जुबान से करते हैं, हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना जी बच्चों, झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। इसका मतलब हम गुफ्तार, सरापा गुफ्तार, तुम हो सरापा का मतलब है सर से लेकर पांव तक। इसका मतलब यह मुकम्मल तौर पर आज का जो आदमी है ये मुकम्मल तौर पर गुफ्तार का गाजी है, टोटल जो है वो बातें करने वाला, अमल बिल्कुल सिफर है। जब अमल सिफर है तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा जी? ये बात जो है, और जो पुराने बुजुर्ग थे जिनकी मिसाल दिए, वो उनको उनकी यार बातें बड़ी असरवारी थी, एक बात कहते कम जानते थे लेकिन बड़ी उनका इज्जत मुकाम था। तो ये लम्हा साहब कहते हैं तुम हो गुफ्तारे सरापा, वो सरापा वो सर से लेकर किरदार थे, अमली किरदार थे, उन्होंने एक अपना किरदार, अपना जो उनका अमल था, अपना जो काम काज के अंदर उनकी जो है वो हर लिहाज से उनकी खूबियां जो थी, उन्होंने अपने आप को इस तरह अपना लोहा मनवा लिया। अगर उन्होंने कहा कि सच बोलना है, इंसाफ कायम करना है,

आई ओ खुला पिया दरवाजा। महाराज जी चूंकि बात टाइम बड़ा तेजी के साथ गुजर गया, मीर साहब की बात को भी आगे लेकर चलना है। पंजाबी ने जो गल सी अदर मीर साहब ने वही बात थी कि सुबह टाइम पहले आ उस उठना और क्या क्या उसना सिस्टम आ है जी, क्या क्या खूबसूरती है। बहरल मेरे लंदन में भी न छूटे अदाबे सारखेजी है जी। बहरल ये एक बड़ा मुश्किल काम आ, लिहाजा मैं समझना कि अज ने मुसलमान की यकीन करो मुसलमान अज ने मुसलमान की दुनिया अपने आप की आखने, मैं खुद अपने आप की कहना पाया कि मिकी और जितने भी मेरे दोस्त बाप सुनने वाले हो यकीन कर सो एक इकबाल ना पैगाम ने या जो मियाँ साहब ना पैगाम ने, मैं समझना कि उन्होंने अपनी जिंदगी इस पैगाम मारे सर्फ कर दी। उन्हें कोई किसी किस्म को लालच नहीं सी, उन्हें किसी किस्म की कोई तलब नहीं सी, लेकिन अज ये पैगाम साढ़े वास्ते जरा यह मछली रहा अज। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट सुन जो बड़े लोग है एहले इलमे एहले दानश है मुल्की मामला चलने वाले, और अफसोस का कहना पैना कि जनाब बेशुमार मामला चलने आपे पता ही कोई नहीं, यकीन कर सो। और यह भी एक बहुत बड़ी जबानी तासीर या वह पैगाम पहुँचने की बुनियादी वजह यह भी होनी

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab hai. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइम गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया है द क्लेम टीम तुसने खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम या गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसने की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057100009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
6: 07939-849-339. तू सबका है खुदा तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
8: My name is Shireen
9: My name is Abdul Rahman
10: My name is Shai Mudashir
11: This is Rahul
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.
12: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक एफएम दिल से आपके साथ
13: लिंक एफएम शेफील्ड
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.
7: Link FM.
14: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire.

339 or give us a call on 011-4261-8181.

आप एंजॉय कर रहे होंगे आज के ड्राइव टाइम को। ड्राइव टाइम पसंद आया जरूर बताइएगा। 339

तस्वीर हो रहा है। टुडे इज ड्राइव टाइम शो। सपोर्ट आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। 9849339।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।

0: Advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
1: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
2: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग वाले खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खानियां ना कोई जवाब है नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ते एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ते भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 07931737547
3: या 07784850934.
4: Do you ever find yourself lonely or isolated? Or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
5: जहाँ दिल मिलते हैं जहाँ बातें बनते हैं हर राह की मंजिल
6: जहाँ बातें बनते हैं वही है लिंक FM दिल से आपके साथ
7: लिंक FM Sheffield
8: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM
9: सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक FM दिल से आपके साथ
7: लिंक

0: क्या आपको ये किताब कबूल है?
1: जी कबूल है।
2: जी कबूल है।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक।
1: अब कैसे जाया जाएगा मुझसे? मैं छुट्टी लेके जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करोगी?
2: जी।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: You are listening to Link FM.
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
3: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा।
4: यार,
3: ये रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था। प्रिय जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सरवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

और हमारी इस समय की ये नसीहत आप बायक वक्त इस वक्त सुन रहे हैं आपके अपने लिंक एफएम शेफील्ड से 96.7 और अपने सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद। और जी हां सामिन, प्रोग्राम रंगे महफिल ये आपके मेजबान सैयद हसन आदर और अपने सभी सुनने वालों तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतरम और मौजूद सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी आवाज सुन रहे हैं बफजल खुदा अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल सही होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे होंगे। और अगर खुदा ने खास्ता आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है

उस हवाले से इस प्रोग्राम में जरूर बातचीत हम करेंगे और हमारे मेहमान भी अगर मौजूद हुए तो उनसे भी ये सारे ख्याल किया जाएगा, अपील किया जाएगा। अभी तक उनकी आमद कंफर्म नहीं है। और अजीन सामने खूबसूरत मौसम है, आज की ये हसीन शाम आप सभी सुनने वालों के नाम बताइएगा आज क्या कुछ किया दिन भर आपने, क्या मसरूफियात रही आपकी। अगर बात करें कि घर के कामकाज, घर के कामकाज जब शुरू होते हैं, स्पेशली बात कर रहा हूं बिल्डर्स का, वो बचपन में ये जरूर सुना था कि बिल्डर्स यानी कि जिन्हें हम अपनी जुबान में वहां मिस्त्री कहते हैं ना, मिस्त्री आप लगाते

आप बताइएगा कि आपके बिल्डर्स के हवाले से कैसे जज्बात हैं, ख्यालात हैं, तवक्कात हैं, खदशात हैं, कुछ भी तजुर्बात हैं तो आज के इस प्रोग्राम में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इससे पहले कि हम इस हवाले से मजीद बात करें, अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से, और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम। इश्क करना है तो फिर खौफ के पहलू से निकल, इश्क करना है तो फिर खौफ के पहलू से निकल, इस ताल्लुक में कोई डर नहीं देखा जाता।

और सामिन अभी आप खूबसूरत शायरी सुन रहे थे। शायरी थी जनाबे शकील बदायूनी की, मौसीकी थी रवि की, आवाज सदाबहार मोहम्मद रफी की और गीत था आप सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त हमें आज की इस बज में आज की इस महफिल में सुन रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज के हमारे पहले कॉलर मैनचेस्टर से रुखसार चौधरी साहब, क्या कहने आपके, आते हैं तो एक महफिल सी लगा देते हैं आप। और हमारे नए ब्रॉडकास्टर तोराब हैदर को आप बहुत सी दुआओं से नवाज रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम। और आपने भी एक खूबसूरत गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल करने को कहा है, ये लगता है कि इनको भी शायरी से शगफ है और शायरी ये भी पसंद करते हैं। न था शायरी मेरा मशगला, न था आशना में शेर से, न था आशना में शेर से, न था शायरी मेरा मशगला, तेरी याद ने तेरी चाह ने मुझे शेर कहना सिखा दिया। पसंद आपकी पेशकश आपके अपने ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की, लीजिए तू शायर है मैं तेरी शायरी। खूबसूरत शायरी है समीर की, मौसीकी है नदीम श्रामन की, आवाज है अलका याग्निक की।

0: listening to Link FM for the latest local, national and international
1: Sheffield.
2: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज्यादा अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.

0: trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safely Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safelyrider.co.uk. Safely Rider, helping you secure your future.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट कुछ स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, वन बेड फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
3: The Hindi Urdu Music Show on Bradford Asian Radio.
4: Bradford Asian Radio.
5: और सामने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंग महफिल में खुशामदीद।

हम यूसुफ़ ज़मान थे अभी कल की बात है, हम यूसुफ़ ज़मान थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है। हम यूसुफ़ ज़मान थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है। वो दिन भी थे कि हम ही तुम्हारी जुबान पे थे, वो दिन भी थे कि हम ही तुम्हारी जुबान पे थे। मौजू-ए गुफ्तगु तुझे अभी कल की बात है। वो दिन भी थे कि हम ही तुम्हारी जुबान पे थे, मौजू-ए दास्तां थे अभी कल की।

जिन दोस्तों की आज कमी है हयात में, जिन दोस्तों की आज कमी है हयात में, वो अपने दरमियां थे अभी कल की बात है। जिन दोस्तों की आज कमी है हयात में, वो अपने दरमियां थे अभी कल की बात है। कुछ हादसों से गिर गए मौसम जमीन पर, कुछ हादसों से गिर गए मौसम जमीन पर, हम रश के आसमां थे अभी कल की बात है। वो दिन भी थे कि हम ही तुम्हारी जुबां पे थे, वो दिन भी थे कि हम ही तुम्हारी जुबां पे थे। मौजूए दास्तां थे अभी कल की बात है, हम यूसुफ़े ज़मां थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है।

और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज थी नाईद अख्तर की, फिल्म का नाम था शमा, शायरी थी मसरूर अनवर की। और आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की है स्वीडन से जनाबे नवीद राणा साहब, आपने बेहद शुक्रिया आपका। और आप मुकेश की आवाज आज के इस प्रोग्राम में शामिल करना चाह रहे हैं और एक नहायत ही खूबसूरत गीत है, आपका कहना है कि वो गीत आपके नाम किया जाए। तो चलिए, पसंद आपकी पेशकश आप के अपने ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की। कहते ना कि आ जा के अभी दर्द का मौसम नहीं गुजरा, आ जा के अभी दर्द का मौसम नहीं गुजरा, आ जा के अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है बस एक तेरी कमी है।

और सामीन अभी आप पसंद सुन रहे थे जनाबे नवीद राणा साहब की स्वीडन से, आवाज थी सदाबहार मुकेश की, शायरी थी भारत व्यास की, मौसीकी थी एस एन त्रिपाठी की।

0: और सामीन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे और गीत चल रहा था और साथ साथ स्टूडियो में आमद हो गई है समा की, जिन्हें खुश आमदेद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ निभा रही है जी समा, अब आपकी माइक्रोफोन भी खुली है और आपकी जानिब है जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम जी सामी, मैं हूँ आपकी होस्ट सना और आप सुन रहे हैं बेफर्ड एजियन रेडियो 1430 AM पे। हमारे स्टूडियो पे आप कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर और आप हमें गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं www.bafferedagentradio.co.uk पे। अगर आप अपना प्यारा सा गीत और अच्छी सी शेर शायरी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 07800599563 पे। तो चलिए आप किसी गजल हो जाए,
0: चलिए
1: जिसने तेरी आंखों में शरारत नहीं देखी।
0: क्या कहने,
1: जिसने तेरी आंखों में शरारत नहीं देखी बुलाक कहे उसने मोहब्बत नहीं देखी।
0: क्या कहने बाबा,
1: एक रूप मेरे ख्वाब में लहरा सा गया था फिर दिल में कोई चीज सलामत नहीं देखी।
0: क्या कहने
1: आईना तुझे देख के गुलनार हुआ था, शायद तेरी आंखों ने वो रंगत नहीं देखी।
0: क्या कहने बाबा,
1: यूं नक्श हुआ आंख की पुतली पे वो चेहरा, यूं नक्श हुआ आंख की पुतली पे वो चेहरा फिर हमने किसी और की सूरत नहीं देखी।
0: बहुत खूब फिर से पढ़िएगा इसे।
1: यूं नक्श हुआ आंख की पुतली पे वो चेहरा, यूं नक्श हुआ आंख की पुतली पे वो चेहरा फिर हमने किसी और की सूरत नहीं देखी।
0: क्या कहने,
1: खैरात किया वो भी जो मौजूद नहीं था, तूने तो ही दोस्तों की सखावत नहीं देखी।
0: हाँ हाँ हाँ, क्या कहने,
1: सदे शुक्र गुजारी है कयामत तन तनहा, इस रात किसी ने मेरी हालत नहीं देखी।
0: बहुत खूब,
1: इस रात किसी ने मेरी हालत नहीं देखी। क्या तुझसे कहें कैसे कटेगी अच्छा है कि तूने ये मुसीबत नहीं देखी।
0: बहुत खूब
1: शायद इस बाइस वो फिरोजा है अभी तक, शायद इसी बाइस वो फिरोजा है अभी तक, सूरज ने कभी रात की जुल्मत नहीं देखी।
0: बहुत खूब,
1: सबकी तरह तूने भी मेरे ऐब निकाले और सबकी तरह तूने भी तिनका हूँ मगर सैल के रस्ते में खड़ा हूँ ऐ भागने वालों मेरी हिम्मत नहीं देखी।
0: क्या कहने वाह,
1: जो ठान लिया दिल में वो कर गुजरा हूँ शहजाद आई हुई सर पे कोई आफत नहीं देखी।
0: पहला शेर पढ़िए ताकि उससे मुतलका एक गीत मैंने क्यों किया सबसे पहले।
1: जिसने तेरी आंखों में शरारत नहीं देखी वो लाख कहे उसने मोहब्बत नहीं देखी।
0: और इस गीत के साथ ही हम चलेंगे ब्रेक पे और ब्रेक के बाद लाइव कॉल होंगी।
1: ठीक हो गया।

0: मेरी हम सफर तेरी नजर है, मेरी उम्र भर की ये दौलतें। मेरे हम सफर तेरी नजर है, मेरी उम्र भर की ये दौलतें, मेरे शेर मेरी सदाकतें, मेरी धड़कनें मेरी चाहतें। मेरे हम सफर तेरी नजर है, मेरी उम्र भर की ये दौलतें, मेरे शेर मेरी सदाकतें, मेरी धड़कनें मेरी चाहतें। तुझे जज्ब कर लूं लहू में मैं कि फिराक का ना रहे खतर। तुझे जज्ब कर लूं लहू में मैं कि फिराक का ना रहे खतर। तेरी धड़कनों में उतार दूं मैं ये ख्वाब ख्वाब रिफाकतें।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: ये रिदाए जहां तुझे सौंप दूं कि ना धूप तुझको कड़ी लगे। ये रिदाए जहां तुझे सौंप दूं कि ना धूप तुझको कड़ी लगे। तुझे दुख न दे मेरे जीते जी सर दस्त गम की तमाजतें।
1: क्या बात है, बहुत।
0: और मेरी सुबह तेरी सदा से हो, मेरी शाम तेरी जया से हो। मेरी सुबह तेरी सदा से हो, मेरी शाम तेरी जया से हो। यही तर्ज पुरुष से दिल रखे तेरी खुशबू की सिफारतें।
1: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
0: और सना, इसी के साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। और सुनने वालों को हम अक्सर यही कहते हैं कि अगर अभी अभी आपने हमारा रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया है तो आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना हम ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk। सुनने वालों को आप नंबर भी बता दीजिए।
1: और जी सामीन, अगर आपको हमसे कॉल पे बात करनी है या अपनी गीत हम तक पहुंचाने हैं और अपनी बात हम तक पहुंचानी है तो हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर।
0: और हमारे जो सबसे पहले कॉलर होते हैं आप अक्सर जानते हैं कि जनाब शकील साहब होते हैं, तो शकील साहब गालपन इस वक्त लाइन पे हमारे साथ हैं, तो अभी हम उनकी कॉल जो है वो मिलाते हैं और फिर सभी सुनने वालों से उनकी मुलाकात भी करवाते हैं। तो यूं करते हैं कि शकील साहब से अब बातचीत करते हैं।

0: शायद खुदा से नहीं डरते,
1: इस दौर के इंसान खुदा से नहीं डरते। वाह वाह, बहुत खूब।
0: ऐसे भी हैं कुछ लोग जो दौलत के नशे में,
1: ऐसे भी हैं कुछ लोग जो दौलत के नशे में
0: मजलूम की आहों से दुआ से नहीं डरते।
1: हाँ हाँ, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह।
0: हर हाल में जीने की कसम खाई है हमने,
1: हर हाल में जीने की कसम खाई है हमने,
0: हम अहले मोहब्बत हैं जफा से नहीं डरते।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने।
0: हम जहर भी पी लेंगे बड़े शौक से, लेकिन
1: हम जहर भी पी लेंगे बड़े शौक से, लेकिन
0: डरते हैं मसीहा से दवा से नहीं डरते।
1: डरते हैं मसीहा से दवा से नहीं डरते, क्या कहने, क्या कहने।
0: मर कर भी दिखा देंगे तेरे चाहने वाले,
1: हाँ हाँ,
0: है तालबे दीदार फना से नहीं डरते।
1: बहुत खूब,
0: शुक्रिया। हर हाल में मंजिल पे नजर होती है जिनकी,
1: हाँ हाँ,
0: हर हाल में मंजिल पे नजर होती है जिनकी, राहों में कभी रहनुमा से नहीं डरते।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
0: शुक्रिया। तो आखिरी शेर कहते हैं, इस दौर में जीना कोई मुश्किल नहीं सागर,
1: इस दौर में जीना कोई मुश्किल नहीं सागर,
0: नहीं सागर, हर रोज जो मरते हैं कजा से नहीं डरते।
1: बहुत खूब, फिर से पढ़िएगा, क्या ही खूबसूरत मिसरा है, वाह वाह वाह वाह।
0: इस दौर में जीना कोई मुश्किल नहीं सागर, हर रोज जो मरते हैं
1: कजा से नहीं डरते। कहते ना कि तमाम उम्र सुलगने से ये तो बेहतर है, तमाम उम्र सुलगने से ये तो बेहतर है कि एक बार जले और जल के मर जाए।
0: एक गजल है फजल लखनवी, इनका नाम है।
1: जी जी, इनायत कीजिए।
0: क्या इश्क उलझे रस्ते हैं, मंजिल का कहीं पर नाम नहीं।
1: वाह वाह, क्या कहने।
0: क्या इश्क उलझे रस्ते हैं, मंजिल का कहीं पर नाम नहीं।
1: वाह वाह।
0: तकदीर है और तदबीर नहीं, आगाज है और अंजाम
1: नहीं। बहुत खूब,
0: शुक्रिया। दम भर की हंसी, दम भर की खुशी, ये भी तो दिले नाकाम नहीं।
1: बहुत खूब।
0: इस चलती फिरती दुनिया में सब कुछ है मगर आराम नहीं,
1: आराम नहीं। बहुत खूब,
2: बहुत अच्छे।
0: ये फेर मोहब्बत के, ये फेर मोहब्बत के तौबा, आई ने जफा भी आम नहीं।
1: बहुत खूब।
0: कातिल की छुरी पर खून तो है कातिल पे मगर इल्जाम नहीं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। कहते ना कि मैं अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करूं, मैं अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने,
0: दस्ताने, माशाल्लाह। किस्मत की लकीरें देख तो लें तहरीर मगर ये आम नहीं। किस्मत की लकीरें देख तो लें तहरीर मगर ये आम नहीं, इस खत को भला क्यों कर समझे जिस खत में हमारा नाम
1: नहीं। बहुत खूब, बहुत
0: खूब, शुक्रिया। दुनिया के बड़े बाजारों में जो सुनता हूँ अपना अफसाना,
1: वाह।
0: दुनिया के बड़े बाजारों में
1: जो सुनता हूँ अपना अफसाना,
0: अफसाना, जैसे कि ये मेरा जिक्र नहीं, जैसे कि ये मेरा
1: नाम नहीं। बहुत खूब। कहते ना कि ये और बात नाम हमारा नहीं हुआ, ये और बात नाम हमारा नहीं हुआ, पीछे तो हम किसी से किसी बात में नहीं,
0: माशाल्लाह। फिर कहते हैं, बरसों की ये मेरी तनखाई, ये पिछले पहर का सन्नाटा, अश्कों में मुझे कह लेने दो ये खास है वह किस्सा, आम नहीं,
1: आम नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब।
0: नजरों में तो सादो दिल में चुभन, नजरों में तो सादो
1: दिल में चुभन,
0: एक शमा है एक परवाना, दोनों में ही बातें होती हैं आवाज का लेकिन नाम,
1: नाम नहीं। बहुत खूब,
0: शुक्रिया। तो आखिरी शेर कहते हैं, बिजली की चमक में शोले हैं,
1: वाह वाह,
0: बिजली की चमक में शोले हैं, फूलों की हंसी में आंसू हैं,
1: क्या कहने, वाह वाह,
2: क्या बात है।
0: बिजली की चमक में शोले हैं, फूलों की हंसी में आंसू हैं, ये फजल वफा की दुनिया है फिर भी तो वफा का नाम नहीं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, क्या कहने।
0: फजल लखनी उनका नाम था, तो बड़ी मेहरबानी,
1: बहुत शुक्रिया। और आप के लिए हमारी जानब से बहुत सी तालियां, सलामत रहें और इसी तरह तशरीफ लाते रहें। अल्लाह हाफिज़,
2: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
1: اور جی سامین آج کے اس پروگرام کے پہلے کالر تھے, آپ کو شاعری کیسی لگی جناب شکیل صاحب؟
2: شکیل صاحب کی شاعری ہمیشہ ہی بہت اچھی ہوتی ہے, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی شعر و شاعری عرض کی ہے, بہت اچھے.
1: سنا ایک بار ان سے بات ہو رہی تھی نا, تو ان کی بہت بڑی لائبریری ہے اپنے گھر میں, انہوں نے بہت سی کتابیں اکٹھی کر رکھی ہیں شاعری کی.
2: اچھا,
1: تو ہم نے کہا کہ شکیل صاحب لگتا ہے ہمیں پلان بنانا پڑے گا آپ کے گھر سے شاعری کی کتابیں چوری
2: کرنے کے لیے. صحیح بات ہے.
1: تو پھر ذہن میں آیا کہ اب تو سوشل میڈیا پہ اور آن لائن ہر چیز موجود ہے.
2: بالکل ایسی بات,
1: وہ دن گئے کہ ایک زمانہ تھا تو ایسی چیزیں بھی چوری ہوتی.
2: لیکن ایک صحیح بات بتاؤں, جو کتاب میں شعر و شاعری پڑھنے کا مزہ ہے نا, وہ آن لائن پڑھنے کا مزہ نہیں ہے. بالکل.
1: اور اگر ہسٹری میں ہم جائیں تو کہتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا نام ہے یونان سے ارسطو, افلاطون, یہ جو بڑے بڑے نام ہیں, کہتے ہیں کہ اس جو ہماری تہذیب ہے, جو ہمارا اسپیشلی کون سا علاقہ ہے ادھر پنڈی سے آپ آگے جاتے ہو تو جو بہت ٹیکسلا کی جو تہذیب و ثقافت ہے, کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال پرانی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہاں کے کچھ کتب تھیں جو کہ چوری ہو کے تو یونان گئیں اور وہاں سے یہ لوگ فلاسفر بنے. پتہ نہیں یہ بات ہے یا اس میں کچھ حقیقت ہے, ہمیں نہیں پتا, ظاہری
2: سی بات ہے.
1: لیکن اس میں خاصے کچھ لوگوں نے دلائل دیے ہیں کہ یوں تھا کہ یہ بہت ہی پرانا یہاں پہ کتب گھر تھا, جیسے یہاں کتابیں تھیں تو وہ چوری ہوئی تھی اور وہ ساری یونان میں گئی تھی, اس کے بعد ارسطو اور افلاطون بنے. جی جی, اور سننے والوں سے التماس ہے کہ اگر آپ بھی آنا چاہیں تو کال.
2: سامعین, اگر آپ کو ہمارے کال پہ کال کرنی ہے, ہمارے اسٹوڈیو کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ 01274306677 پر ہے, اور اگر آپ ہمیں ویب سائٹ پہ بھی سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.bradfordasianradio.co.uk پہ.
1: اور ہماری اس وقت کی یہ نشریات آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ سن رہے ہیں, آپ کے اپنے لنک ایف ایم شفیل سے 96.7 ایف ایم پر, اور یہ نشریات اس وقت آپ سی وی ایف ایم ملز براہ سے 104.5 ایف ایم پہ بھی سن رہے ہیں. اپنے سبھی سننے والوں کو, وہ جہاں کہیں بھی ہماری یہ نشریات سن رہے ہیں, اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بتاتے چلیں کہ 15 اور 16 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے بریڈفورڈ میں.
2: جی بالکل, ایک اور اچھا سا میلہ جو کہ بریڈفورڈ مور پارک میں,
1: جی جی جی, کلنگ ہال روڈ,
2: کلنگ ہال روڈ پہ جو ہے, اور اس میں آ رہے ہیں, تشریف لے کر آ رہے ہیں عمران حق صاحب.
1: کیا نام ہے؟
2: کون ہے؟
1: ایک عمران حق ہی نہیں ہے, وہاں بہت سے سنگرز کا
2: اس کا گانا ہم نے یہاں پہ پوسٹ کیا ہوتا کہ ہم اپنے سامعین کو ایک اچھا سا سانگ سنا دیں.
1: ویسے تو میلہ کمیٹی آج

0: शरीक करेंगे,
1: जी
0: लेकिन इस वक्त लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी हो सारी है हमारे। अगर कोई भी समय आना चाहे आप तशरीफ ला सकते हैं, और फिर यूं होगा कि हम गीत रोक लेंगे और आपको पहला मौका देंगे,
1: लाइव कॉल्स लेंगे और आपसे अच्छी अच्छी शेर शायरी सुनेंगे।
0: लेकिन अभी सुनते हैं आंखों के हवाले से, बहुत ही प्यारा गीत है आप सभी के नाम।

0: और जी हाँ, अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम कॉलर स्वीडन से नवीद राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अर्जुन भाई कैसे हैं
0: आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए ठीक है खैरियत से मोहतरम?
1: अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं आपकी बहुत शुक्रिया अर्जुन भाई के लिए, तमाम दोस्तों को बहन भाइयों को सुनने वालों को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और अभी शहजाद अहमद साहब की गजल मैंने सुनी।
0: जी जी जी जी सुनाने तो, सुनाई थी
1: जी जी, तो उनका एक और कलाम आपकी नजर करना चाहता
0: हूँ। जरूर, क्या कहने शहजाद अहमद की, बहुत अच्छा
1: है। कहते हैं कि जो शजर सूख गया है वो हरा कैसे,
0: जो शजर सूख गया है वो हरा कैसे हो,
1: मैं पैगंबर तो नहीं मेरा कहा कैसे हो।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया। दिल के हर जर्रे पे है नक्श मोहब्बत, उस नक्श मोहब्बत उसकी।
0: हाँ हाँ, दिल के हर जर्रे पे है नक्श मोहब्बत उसकी,
1: नूर आंखों का है आंखों से जुदा कैसे हो।
0: बहुत
2: बहुत,
1: और जिसको जाना ही नहीं उसको खुदा क्यों माने,
0: जिसको जाना ही नहीं उसको खुदा क्या माने,
1: और जिसे जान चुके हैं वो खुदा
0: कैसे हो।
2: बहुत क्या बात है,
0: बहुत।
1: और उम्र सारी तो अंधेरे में नहीं कट, हाथ ले गए शेर, सारी तो अंधेरे में नहीं कट सकती,
0: उम्र सारी तो अंधेरे में नहीं कट सकती,
1: हम अगर दिल ना जलाएं तो ज़िया कैसे,
0: तो ज़िया कैसे।
2: बहुत खूब
0: बहुत खूब, कहते ना कि कभी ना खत्म किया मैंने, कभी ना खत्म किया
1: वो। एक और शेर है ना कि अब जिसके जी में आए
0: वो
1: नहीं चाहे।
0: हाँ हाँ,
1: कि हमने तो दिल जला के सरेआम रख लिया।
0: क्या कहने शिकवाए सुन,
1: आप ऊपर से जाते माशाल्लाह।
0: एक
1: रोज भी खुलकर ना मुलाकात हुई, जिससे दो रोज भी खुलकर ना मुलाकात हुई, मुद्दतों बाद मिले भी तो गिला कैसे,
0: कैसे हो। बहुत खूब बहुत खूब,
1: और दूर से देख के मैंने उसे पहचान लिया,
0: दूर से देख के मैंने उसे पहचान लिया,
1: दूर से देख के मैंने उसे पहचान लिया, उसने इतना भी नहीं मुझसे कहा
0: कैसे हो क्या।
1: दूर से देख के मैंने उसे पहचान लिया, उसने इतना भी नहीं मुझसे कहा
2: कैसे हो।
0: क्या पानी के ताल्लुक,
1: मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं।
0: क्या कहें क्या कहें,
1: क्या बात है। और अगला शहर की, वो एक दौर था जब मैंने तुझे चाहा था,
0: वो एक दौर था जब मैंने तुझे चाहा था,
1: चाहा था, दिल का दरवाजा है हर वक्त खुला कैसे।
0: बहुत खूब बहुत खूब
2: बहुत अच्छे,
0: क्या कहें,
1: दिल का दरवाजा है हर वक्त खुला कैसे,
0: कैसे?
1: जब कोई दादे वफा चाहने वाला न रहा,
0: जब कोई दादे वफा चाहने वाला न,
1: कौन इंसाफ करे हश्र बपा कैसे,
0: कैसे हो। बहुत
2: बहुत खूब बहुत अच्छे।
1: और आईने में भी नजर आती है सूरत तेरी,
0: आईने में भी नजर,
1: आईने में भी नजर आती है सूरत तेरी, कोई मकसूद नजर तेरे सिवा कैसे हो।
0: क्या कहने क्या कहने, कहते हैं ना कि आप तो जचती नहीं निगाह,
1: कि मेरी निगाह से खुद को जो देख लेते कभी, मेरी निगाह से
0: खुद को जो देख लेते कभी,
1: कभी तुम्हारे हाथों से आईने गिर गए हो।
0: क्या कहने क्या कहने, कहते हैं ना कि तुमको खुद
2: वाह।
1: और शीशे का बदन लेकर फिरते नहीं रहा हूं मैं, पत्थर भी छुपे होंगे लोगों की निगाह,
0: हाँ हाँ अच्छी नहीं,
1: वाह वाह, शीशा अगर बनोगे तो
0: पत्थर भी आ,
1: वाह वाह क्या खूबसूरत। और किन निगाहों से उसे देख रहा हूँ
0: शहजाद,
1: किन निगाहों से
0: उसे
1: बात कह रहे हैं, किन निगाहों से उसे देख रहा हूँ शहजाद, मुझको मालूम नहीं उसको पता कैसे हो।
0: क्या कहने, कहते ना कि तेरा
1: ये मुकर्रर की है
0: कि तेरा
1: याद आ गया कि तेरी हर नजर इशारा तेरी हर अदा सहारा
0: हाँ हाँ
1: कभी दिलबरी ने लूटा कभी बेरुखी ने मारा
0: हाँ हाँ मेरी हर नजर
1: मुझे तो इस पे वो ख्याल याद आ गया गालिब का कि
0: जी जी
1: हम हैं मुश्ताक और वो बेजार
0: या इलाही
1: ये माजरा क्या
0: हाँ हाँ

0: Vai. वाह शादी वाह
1: जी जी,
0: यानी ये चाहता है कि आप कॉलर ना लिया करें, आप बस सुनाया करें।
1: नहीं नहीं नहीं, मजा इतना अजाबे दीद में आंखें लहू लहू करके
0: मैं शर्मसार हुआ तेरी जस्तजू करके।
1: क्या क्या?
0: और खंडर की तह से बरीदा बदन सरों के सिवा,
1: वाह वाह,
0: मिला ना कुछ भी खजानों की आरजू करके।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: और सुना है शहर में जख्मी दिलों का मेला है, मिसरा सुनिए चाहिए, सुना है शहर में जख्मी दिलों का मेला है, चलेंगे हम भी मगर तैरहन रफू करके।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: और मुसाफिरे शबे हिजरा के बाद भेद खुला, हवा दुखी है चिरागों की आबरू करके।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: और जमीन की प्यास उसी के लहू को चाट गई, जमीन की प्यास उसी के लहू को चाट गई, वो खुश हुआ तो समंदर को आबजू करके।
2: बहुत अच्छे,
1: वाह वाह।
0: और ये घासले गजल शेर है और बड़ा ही मारूफ शेर है कि ये किसने हमसे लहू का
1: खिराज फिर मांगा, अभी तो आई है, क्या
0: ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू कर।
1: बेशक बेशक, जो इस वक्त मुल्की हालात है उस पे बहुत ही खूबसूरत शेर है कि ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा,
0: फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल
1: को सुरखरू करके। कहते ना कि
0: अहले वफा किसके दर पे पहुंचा है, जुलूस से अहले वफा
1: किसके दर पे
0: पहुंचा है, निशाने तौके वफा जीनते गुलू करके।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
0: और उजाड़ रुत को गुलाबी बनाए रखती है,
1: उजाड़ रुत को गुलाबी बनाए रखती है,
0: हमारी आंख तेरी दीद से वजू करके।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: और कोई तो हब से हवा से ये पूछता मोहसिन, कोई तो हब से हवा से ये पूछता मोहसिन, मिला है क्या उसे कलियों को बेनमू करके।
1: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहें।
0: और बड़ी मेहरबानी शाह जी, प्यारी बात यह है कि ख्याल शायरी में पहुंच जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़ात के ख्यालात में कहीं उलझना आसान अच्छी बात नहीं, और कि किसी पे चोट नहीं होती, जनरल सी बात है, जिसको समझ आ जाए उसके लिए बड़ी कीमती है।
1: कहते हैं कि लाख लाख
0: शायरी की है मैंने, शायरी की है मैंने, तिजारत नहीं,
1: वाह वाह,
0: दिल में जो भी ख्याल आ गया लिख दिया।
1: बहुत खूब,
0: एक खत में लिखा हासिल जिंदगी, दूसरे में तुझे बेवफा लिख दिया।
1: क्या कहने क्या कहने,
2: बहुत अच्छे।
0: तो बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया
0: आपने बात करके, आपकी
1: बहुत ख्याल रखिएगा।
0: अल्लाह।

0: और इससे पहले कि इस गीत की बारी आई, आज लगता है इस गीत की बारी नहीं आएगी, जब भी हम लगाते हैं हमारे कोई सामने आ जाते हैं। और अब लाइन पे हमारे साथ हैं बहुत ही मोहतरम रुखसार चौधरी साहब मैनचेस्टर से। जनाब
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चश्मे रोशन दिले माशा, बा कमाल लाजवाब, बहुत आला, बा इज्जत, बा वकार, बा ज़ौक, बा शौक, हर दिल जीर शख्सियत, मेरे प्यारे भाई जनाब काबिले एहतराम पीर सैयद सिन्हा साहब और जनाब मोहतरमा मुकर्रमा मुअज़्ज़मा, मेरे लिए नहायत काबिले एहतराम काबिले इज्जत मोहतरमा सना जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, खुश आमदीद।
1: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरी बात तो आप किस
0: बिल्कुल बेहतरीन, आपकी आवाज आ रही है, मैं बिल्कुल साफ शफाफ,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहूँ मैं आपके प्रोग्राम के बारे में, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, इतना, मैं तो कहता हूँ कि गीत की वारी आने देते हैं, मेरी हाजिरी होगी।
0: नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ सुनाना जरूर है। जी जी, ये इस महफिल की एक रवायत है, एक रीत है, जो भी आते हैं कुछ अशार सुनाते हैं और इस तरह महफिल को चार चांद लगता है।
1: बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, माशाल्लाह यही रौनक है ना कि हल दुबारा हो जाती है, माशाल्लाह लोग गाते हैं और माशाल्लाह अभी राणा नवीद साहब आए हैं, माशाल्लाह बहुत ही मखसूस और माशाल्लाह बहुत उम्दा शरीक करके गए हैं और इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत बातें कर गए हैं। और इनसे पहले जो शख्सियत आई थी वो तो कहती है ना कि वो तो आपके प्रोग्राम की रूह रवान शख्सियत,
0: बिल्कुल
1: मोहतरम अली जनाब उस्ताद मोहतरम जनाब शकील साहब आए थे, माशाल्लाह कमाल, कहते हैं ना कि आगाज उनसे हो जाए तो फिर इंजाम अच्छा हो जाता है।
0: वो कहते हैं ना कि रौनक के बज्म बढ़ेगी जो इनायत होगी, रौनक के बज्म बढ़ेगी जो इनायत होगी, आप तशरीफ ना लाए तो शिकायत होगी।
2: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसीलिए हम मेरे जैसा खाकसार बंदा आ जाता है कि मैं शिकायत का मौका ना।
0: अच्छी बात है, अच्छी बात है जनाब।
1: वैसे मेरे जैसे अदना बंदे की वैसे कोई जरूरत होती नहीं, लेकिन माशाल्लाह इतने अच्छे और इतने खूबसूरत और जो मोहतरमा और आप माशाल्लाह वो जो कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा हो जाता है, आप पूरा साथ निभाते हैं, वो कहते हैं ना बैतबाजी शुरू हो जाती है के हाल।
0: बस मैं इसीलिए अक्सर सुनने वालों से यही इल्तमास होती है कि जो मुसलसल गजल होती है उसके बजाय चीदा चीदा अशआर सुना, वो आप मुसलसल जो गजल होती है। उन्हें मुश्किल होती है पढ़ने में, तो उससे बेहतर यही है कि आप इक्का दुक्का जो अशार होते हैं वो पढ़ा करें ताकि हमें भी कुछ कहने का मौका मिले।
1: मैं कह

0: ये तो आप हैदर को अथाह दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सलाम, और आपको और आपकी पूरी टीम को जनाब मोहतरम मुश्किल साहब आए थे, जंगीर भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, महबूब लाई भाई हैं, चौधरी फरियाज हैं, और राणा नवीद साहब आए थे, उनको भी बहुत बहुत सलाम। तो मैं ये छोटी सी एक पोएट्री लेके आया हूँ,
1: मैं आपको वो तुराब का लोगो सुना दूं।
0: सैयद को आने दो सरकार, सैयद।
1: अच्छा, मैं उसका
0: बनता है ना के हाल माशाल्लाह, उनके डैड के तो इतने बन गया, तो उनका नाम बना, ये तो नाम काफी है ना।
1: जी जी, मैं आपको सुनाता हूँ जो मैं

0: तो सुनाइए
1: जी, मैं छोटी सी पोएट्री लेके आया हूँ जनाब। ये आपकी ये मैं तो यकीन करें कि मुझे आपके सामने पढ़ने में थोड़ा सा टांके काम
0: ना ना ना ना, ना, ना कंपनी टांगनी चाहिए।
1: तो शायद लिखता है, हम करें बात दलीलों से तो
0: रब होती है। मुजफ्फर वारसी की गजल है। वाह
1: बिस्मिल्लाह, बेशक बेशक। उसके होंठों की खामोशी भी
0: सनद होती है। वाह वाह।
1: सांस लेते हुए इंसान भी है लाशों की तरह।
0: हाँ हाँ हाँ, सांस लेते हुए इंसान भी है लाशों की तरह।
1: अब धड़कते हुए दिल की भी लहद होती है।
2: बहुत अच्छे,
1: बहुत शुक्रिया। जिसकी गर्दन में है फंदा वही इंसान बड़ा।
0: ना हाँ।
1: सूलियों से यहाँ पैमाइशे कद होती है।
0: सूलियों से यहाँ पैमाइशे कद होती है। बहुत बहुत।
1: शुभदा घर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास।
0: हाँ।
1: बोलता जैल है बदनाम खिरद होती है।
0: बदनाम खिरद होती है। फिर से पढ़िएगा
1: जी। बहुत शुक्रिया। शुभदा घर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास।
0: हाँ हाँ।
1: बोलता जैल है बदनाम खिरद होती है।
0: हाँ हाँ हाँ। क्या कहने, बहुत।
1: आखिरी शेर आपकी समातों की नजर करता हूँ
0: जी जी।
1: कुछ ना कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन।
0: हाँ हाँ। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन।
1: जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है।
0: क्या कहने, क्या कहने।
1: बहुत शुक्रिया शाह साहब और मोहतरमा सना जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, टाइम देने का, और बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं, और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि आप भी मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे
0: इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़।
0: और सामीन अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे जनाब रुखसार चौधरी साहब मैनचेस्टर से। सुनाइएगा इस वक्त आप हमें कहां पे सुन रहे हैं। हमारी कॉल्स बिल्कुल लाइन आपके लिए खुली हैं। हमारे पास तकरीबन 8-9 मिनट्स रहते हैं। तशरीफ लाना चाहें तो नंबर आपको बताती हैं सना जी।
2: सामीन आप सुन रहे हैं बफर एजेंट रेडियो 1430 एम पे। अगर आप अपनी आवाज हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर।
0: और बात हम कर रहे थे कि ब्रेडफोर्ड में मेला होने जा रहा है। कब?
2: 15 and 16 ऑफ अगस्त पे।
0: हफ्ता और इतवार 15 अगस्त को
2: जी। दो हफ्ते रह गए, स्कूल की हॉलीडेज हैं,
0: तकरीबन 2-2.5 हफ्ते रहते
2: हैं। 2.5 तक रह गए।
0: तो इस मेले में बहुत से सिंगर्स आ रहे हैं। कौन
2: जी? इबाद हक आ रहे हैं,
0: बड़ा नाम है,
2: और
0: नईम
2: हजारी साहब
0: और भी दीगर बहुत से सिंगर्स हैं
2: जी।
0: तो जरूर आइएगा, सुनने वालों से इंशाल्लाह हमारी मुलाकात भी होगी, हम भी स्टेज पे होंगे इंशाल्लाह। और बड़ा ही एक अच्छा एक त्यौहार होगा, एक फेस्टिवल होगा, और उसमें खाने भी होंगे
2: जी,
0: और उसमें गाने भी होंगे।

0: जाना तो उससे पहले ले जाऊं ताकि मेला मुक्ता करें।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: तो यूं करते हैं कि इब्रार की आवाज सुनते हैं, लेकिन इस दौरान अगर आप तशरीफ ले आए तो पहले हम आपको मौका देंगे, इब्रार बाद में, आप पहले।

0: और अजय सामीन आज के इस प्रोग्राम में वक्त कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का जो आते हैं, तशरीफ लाते हैं, शायरी सुनाते हैं, गपशप होती है और यूं कह लीजिए कि इस प्रोग्राम को चार चांद तो आप लगाते हैं। आप सभी का बेहद शुक्रिया। आप बताइए आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा। जैसे सब आते हैं, लाइव कॉल्स पे आते हैं, शेर व शायरी सुनाते हैं, आप लोगों का आपस में वो जो हो जाता है मुकाबला हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।
0: और जी हाँ, आपको एक बार फिर बताते चलें कि 15 और 16 अगस्त को ब्रैडफोर्ड में तकरीबन दो हफ्तों के बाद मेला होने जा रहा है, लीड रोड फेस्टिवल। तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो उसका मीडिया पार्टनर भी है, जरूर आइएगा। इब्राहिम हक से भी आपकी मुलाकात वहां पे रहेगी और साथ में नईम हजारवी। तो जाते जाते नईम हजारवी का एक खूबसूरत गीत और इसी के साथ ही अपने मेजबान सैयद हसन
1: हम इजाजत चाहते हैं
0: और सना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज।

0: Nayab's Takeaway in Sheffield
1: is your perfect one-stop food hub with an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
0: Nayab Takeaway.
1: Will keep you coming back for more.
0: जिसके खाने के लिए सब विजिट नायाब्स online.co.uk
2: एक्सीडेंट हो गया
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया ते द क्लेम टीम तुसानी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाकियां विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057100009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: Advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
6: 07939-849-339. तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
8: My name is Shireen
9: My name is Abdul Rahman
10: My name is Shai Mudashir
11: This is Rahul
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at Link FM. Linking communities, thinking positive. This is your local community radio station, Sheffield's Link FM.

0: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Shaim Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
8: Advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Sheffield's very own community radio station.
10: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Shaim Mudashir.
3: This is Rahul.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
9: On 96.7 and around the world online, this is Link FM.

0: or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Will keep you coming back for more.
1: Just get honey to the air. Visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्लाइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया ते द क्लेम टीम तुसानी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाकियां विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.